0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: 9:11 சோ இந்த நிகழ்ச்சி கலக்கல் அரங்கம் கேம் ஷோ விளையாட போறோம். என்ன கேம் ஷோ அப்படின்னா, ஒரு எழுத்து சொல்வேன், அந்த எழுத்துல துவங்கக்கூடிய 10 வார்த்தைகள் சொல்லணும். ஆனா உங்களுக்கான நேரம் வெறும் 10 வினாடி மட்டும்தான். அந்த 10 வினாடிக்குள்ள அந்த 10 வார்த்தைகளை நீங்க யோசிச்சு சொல்லணும். நீங்க நிகழ்ச்சியில கால் பண்ணி பேசலாம். 0444 அப்படிங்கிற ப்ரிஃபிக்ஸ் டால் பண்ணி 2952

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.telly-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: 9:51 ஆயிருக்கு. 102.3 பாரதி தமிழ் எஃப்எம் கேட்டிருக்கீங்க. நிகழ்ச்சியோட அடுத்த நேயர் யாருன்னு பாப்போம். வணக்கம். ஹலோ.
4: ஹலோ, வணக்கம் மேடம். கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பார்த்திபன். நல்லா இருக்கீங்களா மேடம்?
3: நல்லா

0: 102.3 FM.
1: நூத்தி ரெண்டு புலி மூணு பாட்டுக்கு இதான் தானு. நூத்தி ரெண்டு புள்ளி மூணு பாட்டுக்கு இதான் தானு.
2: घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी. शुद्ध नमक देना, शुद्ध नहीं समझते? वैक्यूम रेपुरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता
3: तो
2: है.
3: ऐसा बोलो ना,
2: वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान. ये हुई ना बात.
4: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध की बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण.
5: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान. जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान.
6: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते. टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते. जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार.
7: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है. आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं.
6: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी.
8: வணக்கம், நான் இசையமைப்பாளர் பரணி பேசுறேன். நேர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விவேக் பாரதி தமிழ் எஃப்எம் 102.3. மனங்களில் எந்தெந்த முழுமையான கொண்டாட்டம்.
9: ஸோ 10:32 ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம வந்து ஜிகே க்வெஸ்டின்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ நேயர்களும் ஆர்வமாக வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க கிட்ட பேசலாம். என்ன ஜிகே க்வெஸ்டின் அப்படின்னா, இன்னொரு முறை ஞாபகப்படுத்துகிறேன். இன்றைக்கி வந்து நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் சாரீஸ், பாரம்பரிய சேலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நம்ம இந்தியா முழுக்க நிறைய பாரம்பரிய சேலைகள் இருக்கு இல்லையா. ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஏற்ற சில புடவைகள்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த புடவையோட பெயர் நான் சொல்லுவேன், நீங்கள் வந்து அது எந்த மாநிலம் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லணும். இதுதான் முதல் கேள்வி. என்னன்னா, வெங்கடகிரி சாரி அது வந்து எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தது?
10: வெங்கடகிரி
9: சாரி.
10: வெங்கடகிரி

0: 102.3 FM.
1: घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, शुद्ध नमक देना। शुद्ध नहीं समझते? वैक्यूम रेपुरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता है।
2: ऐसा बोलो ना,
1: वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक, जिसका दाना दाना एक समान। ये हुई ना बात।
3: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध की बच्चे भी जानते हैं इसके साथ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: 102.3 FM நிகேஷன் அடுத்து நேயர் யாருன்னு பார்ப்போம். பாடல் உங்கள் சாய்ஸ். வணக்கம்.
4: வணக்கம் மேடம்.
3: வணக்கம். யார் எங்க இருந்து சார்?
4: வெங்கடேஷ் மேடம்.
3: முருகேஷ்.
4: வெங்கடேஷ்.
3: வெங்கடேஷ் சொல்லுங்க. வெங்கடேஷ்.
4: மேடம், படம் வந்து படம் ராஜு பாடம் மேடம். அது வந்து மதுரமாக ஒரு பாட்டு இருக்கு மேடம், அது கொஞ்சம் போட்டுருங்க மேடம்.
3: ஓகே சார், அந்த பாடல் உங்களுக்காக வந்துட்டே இருக்கு சார். நன்றி.

माननीय प्रधानमंत्री का खड़े होकर स्वागत किया और साथ ही माननीय राष्ट्रपति के स्वागत में भी सभी लोग खड़े हो गए। रक्षा अलंकरण समारोह 2026 का आयोजन किया जा रहा है। अब